0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाकी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 1,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: 6:15 ठीक सवा छे on this Tuesday की morning, and ये जो early morning का जो first hour of the show होता है, it's that time when I make some close friendships.
2: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ये सारा का सारा घंटा जो it's dedicated to music and music lovers and people who have like a different kind of take on music. One such close friend of mine is Nikhil. Good morning. How are you doing?
3: Good morning, sir.
1: बिल्कुल बढ़िया. क्या हाल चाल है आज ट्यूजडे का? क्या लग रहा है?
3: बढ़िया.
1: वेदर अपडेट?
3: अच्छा है, अच्छा है. गुड. आज ट्रैफिक तो नहीं है रोड पे, रोड्स पूरे खुले हैं.
1: रोड्स खुले हैं इतनी सुबह तो कहाँ ज्यादा ट्रैफिक होता है. वैसे आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो?
3: मैं अभी जा रहा हूँ अलनादा से जा रहा हूँ मैं डेरा साइड जा रहा हूँ, पर अभी ट्रैफिक तो नहीं होगा. यूजुअली होते हैं रोड पे ट्रैफिक, पर है नहीं.
1: चलो वेरी गुड यार, गुड गुड स्टार्ट टू द डे. सो आपने एक बहुत अमेजिंग बात कह दी यार. टेल अस कि कौन सा गाना आपको सुनना है.
3: लक्ष्य मूवी का टाइटल ट्रैक, इंडियन वर्जन ऑफ अनस्टॉपेबल.
1: इंडियन वर्जन ऑफ अनस्टॉपेबल. आई नेवर लुक्ड एट दिस सॉन्ग इन दैट वे यार. या हर किसी को सुबह सवेरे थोड़ा
3: चार्ज अप करता है, थोड़ा बूस्ट करता है, बूस्ट हाँ, बूस्ट करने से काम करता है.
1: सुबह सवेरे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है ना हर किसी को. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर, नाउ दैट यू मेंशन इट, इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ अनस्टॉपेबल. सो ये क्या खुद को डेडिकेट करोगे या एनीबॉडी इन पर्टिकुलर और व्हाट?
3: सबके लिए, खुद के लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है. सब लोग थोड़ा चार्ज अप हो जाओ, काम पे लग जाओ. जैसे हंटर लेके वो सर्कस में होता है ना, चलो लग जाओ. चलो
1: अगर बूस्टर डोज ये तो है, बूस्टर डोज अगर चाहिए आपको सुबह सवेरे, दिस इज दैट सॉन्ग दैट्स गोना डू इट यार. सो निखिल थैंक यू वेरी मच फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस सॉन्ग एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे. या
3: थैंक यू सर.
1: टेक केयर मैन. इंडियन वर्जन ऑफ अनस्टॉपेबल. या नाउ यू विल बी थिंकिंग अबाउट दैट सॉन्ग बाय लिसनिंग टू दिस वन, शंकर महादेवन का एब्सोल्यूट क्लासिक. ऑल थैंक्स टू निखिल. इन केस आपको भी कोई गाना सुनना है, 800-1062 इज द नंबर.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: It's 7:39 on the clock on this Tuesday morning. Aur pata nahi aisa kyun hota hai ki jab bhi koi naya khiladi, naya cricketer aata hai on the horizon, purane wale they rush to give him advice.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Abhi fair the purane khiladi, I don't know if they do it themselves ya phir it's all thanks to the reporters. Now latest is Clive Lloyd, the legendary West Indies cricket captain, giving advice to Vaibhav Suryavanshi. And advice bhi matlab kafi cliche hoti hai, koi nayi baat nahi hoti. Wo kehte hain ki don't change your game. Duniya chahe aapko kuch bhi kahe, just be yourself. Matlab wo jo hamare dada एडवाइस देते थे, वो क्लाइव लॉयड, इनमें कोई फर्क नहीं है. बट देन रिपोर्टर्स को भी तो चैन नहीं है ना, वो भी उनसे वही सड़े पुराने सवाल पूछते रहते हैं कि मिस्टर क्लाइव लॉयड, यस सर, हियर, अगर वैभव सूर्यवंशी 70s 80s के पेस अटैक के सामने खेलता, द लेजेंडरी माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट, तो हाउ डू यू थिंक वो कैसे करता. अब क्लाइव लॉयड के मन में डेफिनेटली आया होगा, भाई मुझे क्या पता है यार, ये कैसा सवाल है. बट देन इतने सारे साल क्रिकेट खेलकर आप थोड़ी डिप्लोमेसी तो सीख ही जाते हो. ही सेड के इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बाय द वे इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड टेस्ट ऑफ हिज कैरेक्टर एंड स्किल्स. हाँ, मन में कुछ और ही चल रहा होगा. बट यस, वैभव सूर्यवंशी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री अगेन, बिकॉज लिस्ट ए क्रिकेट में ही स्कोर्ड द फास्टेस्ट 11 balls mein, but he fell short of 100 yet again in the finals of the list. India A versus Sri Lanka A ka jo final tha, right, usme he scored a 94 of 29 balls. Yeah, do the math. More than 3 runs per ball. Pati, patni aur wo do sab milkar soch rahe hain ki yaar ye kahin agla Tendulkar to nahi hai.

0: RussellKhor.ae.
1: अचानक काफी ज्यादा कंजेशन ऑन E44 अलखेल रोड पर आपको ट्रैफिक मिलेगा रसेल खोर की तरफ जाता हुआ, एंड देन D3 गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे, एंड देन देयर इज अ बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड अनयूजुअल ट्रैफिक, एंड दिस इज अलकूज इंडस्ट्रियल फोर्थ से. जब आप अलकूज फोर्थ मतलब जाएंगे हेडिंग नॉर्थ टुवर्ड्स 26th स्ट्रीट, यहां पर आपको ट्रैफिक मिलेगा कुछ 4 से 5 मिनट का. सो बी केयरफुल आउट देयर. देन देयर इज 611 का आज सुबह से ट्रैफिक है गोइंग टुवर्ड्स हमदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोइंग टुवर्ड्स अरेबियन रांचेस. यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन आउट देयर. यहां पर 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा आप बिताने को तैयार हो जाइए. देन द यूजुअल 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, बेरूत स्ट्रीट, डमास्कस स्ट्रीट का ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो चुका है. एंड ऑन 611 एमिरेट्स रोड यू विल फाइंड 3 से 4 मिनट की देर हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

सो इट्स कॉल्ड रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, और वो दो चीजें जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है. इट्स इम्पॉसिबल, यू डोंट हैव टू चूज एनीमोर थैंक्स टू पापा जॉन्स. बर्गर क्रेविंग और पिज्जा क्रेविंग, डोंट पिक, यू कैन हैव बोथ द न्यू पापा जॉन्स चेडर बर्गर पिज्जा कलेक्शन. चूज फ्रॉम डबल चेडर, नैशविल चिकन एंड बीफ बर्गर पिज्जाज. दिस इजंट जस्ट पिज्जा, इट्स अ फुल ऑन बर्गर पिज्जा मैशअप दैट यू नीड टू ट्राई. डाउनलोड द पापा जॉन्स यूएई ऐप एंड ऑर्डर नाउ. पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा.

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: यार ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द एचआर मैनेजर्स इन एनी कंपनी, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, दे आर द सब्जेक्ट ऑफ जोक्स इन एनी कॉर्पोरेटिव.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: एनी एचआर मैनेजर्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, व्हाट साइड ऑफ द फेंस आर यू, मतलब द नॉन एचआर पीपल, क्या आपको लगता है कि नहीं यार दे डिजर्व इट, काम हरकत ही ऐसी करते हैं वो, और आर यू कि नहीं यार मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, यू हैव सम एम्पैथी फॉर देम. या बट देर इज वन एच आर पर्सन इन द वर्ल्ड, एक बंदी ऐसी है जिसने शी इज गॉन वायरल, एन एच आर मैनेजर इज गॉन वायरल बिकॉज हियर्स द मेल दैट शी इज सेंट आउट टू हर टीम. हाई टीम, we've noticed a significant increase in employees pacing around the office floor during work hours. While we support being active, this has begun creating distractions for others. Starting this week, please limit non-work walking to a maximum of 2 laps per hour. मतलब सोचो अब कितना चलना है ऑफिस के अंदर, ये भी एचआर वाले डिसाइड करेंगे यार. मतलब क्या लगता है आपको, क्या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू आर यू वन ऑफ दोस पीपल हू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर पीपल पेसिंग अराउंड, डू यू थिंक दिस यू नो कंप्लीटली वैलिड व्हाट द एचआर पर्सन डिड, और डू यू थिंक यार इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ फिर वही एचआर वाले. मैं वापस आऊंगा से मस्कारा कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. एआर रहमान का म्यूजिक, वेदांग रैना द स्टार ऑफ द फिल्म इज आल्सो सिंगिंग इन दिस वन. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड, कमिंग अप द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: बिग 106.2.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी. Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ.
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money मनी यूज करो.
1: क्या सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ.
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से.
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है.
2: बिल्कुल, E&Money मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है. इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है. तो E&Money मनी के साथ फिक्र छोड़ो. टर्म्स एंड conditions apply.
3: It's game on with Big Ticket.
4: A guaranteed 25 million dirham prize.
3: 5 winners of 1 million dirhams each.
4: Plus withdrawals.
3: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks. I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: InsuranceMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
11: बर्फ तो नहीं, लेकिन अगर कहीं बारिश पड़ रही है तो डेफिनेटली विल कॉल करके बताओ ऑन 800-1062, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट ऑफ 3 days वेयर इट माइट रेन. सम स्कैटर्ड शावर्स आर एक्सपेक्टेड, दैट्स व्हाट द एनसीएम इज सेइंग, अलोंग विद अ ड्रॉप इन टेम्परेचर. ऐसा कुछ फिलहाल आसार तो नजर नहीं आ रहे. इट्स सनी हॉट स्टार्ट टू दिस डे. 35 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 52%, विंड्स ब्लोइंग एट 23 किलोमीटर पर आवर, हाईज ऑफ 38, लोज ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: from Cocktail 2. Listen, if you have Pritam Chakraborty on your team, on your film, then the music can't go too wrong, right? एक बड़े से बॉक्स में एक चेक हो जाता है. चेक माई इंटरव्यू आउट विद कृति सैनन ऑन यूल फाइंड इट ऑन आई इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम. आप ऑफकोर्स फॉलो करते ही होंगे. नहीं करे तो क्या कर रहे हो यार, फॉलो करो जाकर. गेट लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट आउट देयर. एंड इन दैट इंटरव्यू शी टोल्ड मी कि जो गाना है माशू का, इट वॉज नॉट सपोज टू बी लाइक अ सॉन्ग इन द फर्स्ट प्लेस. इट वॉज जस्ट कि वो बैकग्राउंड, यू नो, सिसिलियन वाइब है इस गाने का. बैकग्राउंड स्कोर में ही होने वाला था, बट देन यू नो दे लाइक्ड इट सो मच, द एंटायर कास्ट एंड क्रू. दे लाइक प्रीतम दा, प्लीज कैन वी प्लीज हैव दिस इन द मेन साउंड ट्रैक. एंड दैट इज हाउ माशूका केम अप. इट्स टॉपिंग द चार्ट्स वर्ल्ड वाइड.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: देखो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई. एक जो जिनको समझ, जैसे कि मैं, समझ में नहीं आता कि GTA 6 का इतना क्या क्रेज है, इतना हाइप, इतने दिन से क्या वेट कर रहे हो. एक गेम ही तो है. Did I just say that? I know, stop looking at me like that. It's fine. I mean, obviously, you're on the other side of the fence. You are like, obviously, everybody in the world is waiting for GTA 6. So then, if you are one of those people, then I've got news for you. Right? Ab, it's a bit too late. Lekin, if your child is born on the 19th of November this year, yeah, if there are some people with some good news on the way, agar 19th of November 2026, a child is born, then they actually qualify to get a free copy of GTA 6. So yeah, I mean, I know, ye khabar sunate hue thoda sa late ho gaya main. But all the GTA 6 fans out there, yeah, that is the official release date, 19 November 2026. Here's Wali Jama from Durandar, The Revenge. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: What if धुरंधर में इतना अमेजिंग म्यूजिक नहीं होता. आई मीन एक के बाद एक, जिस गॉट बैंगर आफ्टर बैंगर, राइट? सो जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट दैट यू टेक अवे द अमेजिंग म्यूजिक फ्रॉम धुरंधर. आई थिंक इट वुड नॉट बी हाफ एज इफेक्टिव.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: 8:42, आप जानते हैं क्या हो रहा है. आई एम कॉलिंग फॉर एंट्रीज फॉर द वेकेशन वर्ल्ड कॉन्टेस्ट. चांस फॉर यू अनमिसेबल इन द बिग समर सरप्राइजेस टू विन अ स्टेकेशन एट द अमेजिंग रिक्सॉस एल्बेरीड इन रसल खेमा. क्या करना है इसके लिए, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जो कि बिल्कुल मुफ्त भी है. सो आपको व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर. जस्ट टाइप आउट BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, BSS स्पेस योर नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 0543091062. दैट 0543091062. अगर आप जीत गए वेकेशन वर्ड कॉन्टेस्ट, योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ टू विन दिस वंडरफुल स्टेकेशन एंड ऑन द स्पॉट टू वॉक्स टिकट्स एंड एन FNB वाउचर भी आप जीत सकते हैं. तो नंबर एक बार फिर 0543091062. बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2 कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
2: अरे को है क्या
3: काटेगी क्या?

0: बिगे से अगले दो तीन दिन होने वाले अकॉर्डिंग टू एनसीएम. चांसेस ऑफ स्लाइट शावर्स, रेन फॉर द रेस्ट थ्री डेज टिल थर्सडे, डिप इन टेम्परेचर्स एज वेल. लेकिन फिलहाल आपका प्राइजेस में भीगने का टाइम, बिकॉज टाइम फॉर बिग समर सरप्राइजेस.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almyrid Ras Al Khaimah.
0: I've got the two contestants ready with me on the phone line. Ankita, say hi to Priyanka. Priyanka, say hi to Ankita.
2: Hi, Priyanka. Hi. Morning.
0: Aap mein se koi bhi engineer hai kya?
2: No.
0: Because today is the World of Women in Engineering Day. कभी आपके माँ बाप ने प्रेशर नहीं डाला कि बेटा इंजीनियरिंग करो, बाकी सब बेकार है? माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया भाई. सी ए ओ, विच इज मोर डिफिकल्ट. आई थिंक सी ए इज, ऑल माय इंजीनियरिंग फ्रेंड्स विल बी वेरी वेरी सैड टू नो, बट आई थिंक सी ए इज मोर डिफिकल्ट यार. हां,
2: या सो द लास्ट मिनट यू डोंट नो इफ विल गेट द डिग्री और नॉट.
0: व्हाट इज द पास परसेंटेज? गुड पॉइंट. में डेसिमल में है ना?
2: यस इट चेंजेस ओवर द इयर्स, लाइक ईयर ऑन ईयर कीप्स चेंजिंग, बट या इट्स ऑलमोस्ट डेसिमल 1, 2, 5.
0: तो अंकिता देखो कितनी मेहनत की प्रियंका ने, दे दो उसको, ऐसे ही दे दो. सीए कर लिया, ये भी फोड़ना है, सब कुछ जीतना है तुमको, है प्रियंका. अच्छा चलो, सो व्हाट्स गोना हैपन इज द वेकेशन वर्ड कॉन्टेस्ट. लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. ओके, गेट सीरियस नाउ, बाहें चढ़ा लो. इट इज गोइंग टू बी अंकिता वर्सेस प्रियंका. सो व्हाट्स गोना हैपन इज मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, ओके, वर्ड्स विच हैव समथिंग टू डू सम कनेक्शन विद अ वेकेशन. क्योंकि आपको पता है क्या जीतने का मौका आपके पास, अ स्टेकेशन एट द वंडरफुल रिक्सॉस अलमेरिड इन रस अल खैमा. योर नेम कुड गो इनटू द ड्रॉ इफ यू क्रैक दिस. 30 seconds, एंड एक एक करके मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स दूंगा. क्लू फॉर यू इज दैट दीज वर्ड्स हैव समथिंग टू डू विद अ वेकेशन, अ हॉलीडे. इट कुड बी लाइक अ डेस्टिनेशन दैट यू गो फॉर हॉलीडे टू, और इट कुड बी समथिंग दैट यू पैक इन योर सूटकेस. ऑलराइट, एंड अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है, इफ यू थिंक दैट यू फिगर इट आउट, यू गॉट टू शाउट योर नेम. लेकिन उससे पहले बिग शाउट करना है. सो अंकिता, इफ यू थिंक यू नो द आंसर, क्या चिल्लाना है आपको?
2: बिग अंकिता.
0: एंड प्रियंका?
2: बिग प्रियंका.
0: यू कैन से बिग सीए आल्सो, बिकॉज़ यूजुअली यू नो पीपल इंसिस्ट ऑन पुटिंग दैट. आई एम नॉट प्रियंका, सॉरी, आई एम सीए प्रियंका, बट यू कैन से बिग सीए प्रियंका. आई डोंट माइंड. ओके, आर यू गाइस रेडी? एनी डाउट्स?
2: No,
3: ऑल क्लियर.
0: प्लीज अभी ऑल क्लियर बोल के बाद में मेरे सवालों का कुंडा मत कर देना, प्लीज. ओके, ऑल राइट. अंकिता, प्रियंका, रेडी? शुड आई स्टार्ट योर टाइम? योर 30 seconds स्टार्ट नाउ. एल ओ एन डैश डैश डैश.
2: बिग अंकिता.
0: वन मोर टाइम.
2: बिग अंकिता.
0: प्रियंका बोलो.
2: लंदन.
0: लंदन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सेकंड. एस डैश एन डैश.
2: Big Priyanka.
0: Big Priyanka.
2: Sand.
0: Sand is the correct answer, which means foundation course clear kar diya Priyanka ne. And her name is into the draw, but Ankita, thank you so much for taking part, but there can be only one winner. But thanks so much for taking part in our contest. And but keep trying, all right? Abhi kaafi din bache hue hain, so keep WhatsApping BSS space Ankita 2054309106 2, all right?
2: Thank you.
0: But Priyanka, क्या बात है भाई, क्या क्या हाथ मार दी. एक तो आपका नाम ड्रॉ में चला गया, like I've told you, for that wonderful staycation, all right, at the Rixos Almyrid in Ras Al Khaimah. Plus, you won 2 Vox tickets and an F&B voucher as well. Oh my God!
2: Wonderful.
0: How does it feel and how badly do you need this staycation? Tell me.
2: Very, very. I've been looking forward to it, because the thing is, I've not taken the vacation in the past 6 months. The work has been so busy, so I'm like, oh, I desperately need this now.
0: Or summer mein, and especially UAE ke summers mein, one thing that all of us need to do is take a staycation. And agar koi muft mein aapko bheja
2: jata hai, the ticket prices, like the flight tickets are so crazy. I was like, staycation makes so much sense.
0: Yeah, correct. Because for a moment, I thought that you're going to take a flight to Ras Al Khaimah, in which case,
2: no,
0: I would
2: no.
0: have. strongly discouraged you, all right? But Priyanka, thank you so much. Absolute pleasure talking to you. Congratulations. Yeah, enjoy all the goodies and have a wonderful time this summer. Okay, I've got our fingers crossed for you. You should do that as well, okay?
2: Definitely. Yeah, definitely.
0: Take care. That is Priyanka, hamari aaj ki draw entrant. And don't forget the big summer surprise made possible by presenting sponsors Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos, Almeri, Russell Khema. Also, don't forget ki kal ek bar phir, I'm going to be playing this game at the same time where one more listener is going to get shortlisted in the lucky draw and also win movie tickets and an FNB voucher. Message karte raho, WhatsApp karte raho, BSS, BSS space, apna naam and send that message. Keep sending it to 054-309-1062. Ucha lamba kad forever. From Welcome to the Jungle coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: 101.2. The Beat of Bollywood.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
5: 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग. एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट. इंश्योरेंस मार्केट .ae.
6: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: Yes, the weather is in the spotlight, and today is the first day of 3 days of scattered rainfall. That's what the NCM is saying. Temperature is going to dip as well, more towards Thursday. Hawa ki raftaar bhi tez hone wali hai. Dinkar Rao, topi sambhal ke. 35 degrees Celsius right now. Humidity at 52%. Winds already quite tez, 23 kilometers per hour. Highs of 38 right now. Lows of 33 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Insurancemarket.ae.

0: नहीं, उनका खुद का ऊंचा लंबा का तो नहीं है, लेकिन अगर उनके रिकॉर्ड्स की, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की लिस्ट बनाई जाए तो दैट इज वेरी ऊंची लंबे कद की. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन ओनली लियोनेल मेसी.
1: 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग. एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट. insuremarket.ae.
0: The question is, has the Messi versus Ronaldo debate been sorted finally? I'm going to tell you why in just a while. Here's Mika Singh with Sawan Mein Lag Gayi Aag.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: मेसी और रोनाल्डो के बीच में बकरा कौन है, यानी कि GOAT ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, ये जो डिबेट है, आई मीन हैज इट बीन सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल? बिकॉज लुक एट द अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मेसी हैज ब्रोकन. ऑलराइट, ही हैज बिकम द हाईएस्ट स्कोरर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री. 18 गोल उन्होंने ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं, एंड इट्स जस्ट बीन टू गेम्स इन दिस वर्ल्ड कप. राइट, लॉन्गेस्ट गोल स्पैन, यानी कि 20 साल से हर एक वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी. ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू एवर स्कोर अ हैट्रिक एट अ वर्ल्ड कप एट 38 इयर्स. मोस्ट गोल्स प्लस असिस्ट्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री 26, एंड देन ही स्कोर्ड अगेंस्ट मोर नेशंस देन एनीवन एल्स, 12 नेशंस के खिलाफ. एंड ही इज ऑल्सो अर्जेंटीनाज यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट वर्ल्ड कप स्कोरर. ही स्कोर एट 18 एंड ही स्कोर एट 38 एज वेल. आई मीन द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. सो आई एम गोना पुट अप अ poll question on our Insta 106.2 Big FM. Has it been settled that Messi greater than Ronaldo? Let the games begin. Filhal, it's time for the big Bollywood quiz. Chance for you to get hands on two open movie tickets. Aaj ka sawal bhi bakre se juda hai. Is dialogue ko suniye, is scene ko suniye, and bataiye ki Akshay Kumar ke saath jo banda hai, wo kaun hai? Okay? And clue for you is ke haali ki sabse dhansu wali jo hit film thi, उस फिल्म की वजह से आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड एटलीस्ट 45 इयर्स इन द इंडस्ट्री फाइनली गॉट हिज ड्यू दिस गाय. सो अक्षय कुमार के अलावा इस बकरे सीन में, गोट सीन में जो आवाज है उसको पहचानिए.
2: अरे ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, भविष्य बताती है, बोलती है ये.
3: एक बार बुलवा के दिखाओ.
2: 1,00,000 रुपए लूंगा.
3: क्या बात कर रहे हो, बकरी से बुलवाने का 1,00,000?
2: विश्वास नहीं हो रहा ना.
3: लेकिन मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए है.
2: आने दे बेटा, आने दे.
3: थोड़ी दूंगा, पहले एक बार बुलवा के दिखाओ.
2: ले अभी ले ले. अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है?
3: अरे वाह वाह वाह.
2: एक और बार ले. जून से पहले कौन सा महीना?
3: भैया ये तो सवाल का आइटम है.
1: तो अक्षय कुमार obviously scammer pro max. तो ये किसको स्कैम कर रहे हैं उनके साथ जो थे, ये किसकी आवाज है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉलीवुड मसल अगर आप जीतना चाहते हैं टू ओपन मूवी टिकट्स. क्लू फॉर यू, हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्म, इसमें इनके रोल की इतनी तारीफ हुई, परफॉर्मेंस की इतनी तारीफ हुई, बिकम अ हाउस होल्ड नेम. राइट, सो इनकी आवाज थी अक्षय कुमार के साथ उस सीन में. सो इफ यू बीन एबल टू फिगर आउट कि ये कौन है, अगर इनका नाम आपको पता है, गिव मी अ कॉल राइट नाउ. 800-1062 पे कॉल करो इफ यू नो द करेक्ट आंसर टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स.
0: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
4: अलराज कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
4: चलो चले अलराज.
6: Today's weather update: sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances, and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
7: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
8: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
9: Mugembo! Khush hua!
10: What do you want to say about this research that says men at work, call it networking or probably strategic updates, but basically it's a fancy aesthetic word for gossip?
11: 200% agree. I used to work in HR.
10: Oh, nice!
11: And I used to have the department heads coming to me asking for everything as what happening in different departments.
10: So yeah, men do come to you and ask about kiski salary badh rahi hai, kaun jo hai is baar promote hone wala and all of that, right?
11: They would try to do and what's happening with that situation that was there. So we know what we need to prepare for the next quarter and next year and all that.
10: So they have a way of getting involved in the corporate politics, but they don't call it gossip, they call it getting updates. Of course, HR has all the gossip. HR and finance people, I think you should be very, very friendly with them. They will give you all the information.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: All right, it's 9:30 dot on the clock on this Tuesday ki subah. And let's take a look. सबसे पहले at the capital Abu Dhabi, आपको हल्का बुल्का traffic मिलेगा at Mustafa Industrial. But there's also some congestion at Mafraq Industrial area. And this is at E11 and going towards Banias. चलते हैं Dubai Sharjah की ओर. Heading south as usual, 311 E11. You'll find going towards Dubai from Sharjah around 8 to 10 minutes ka delay. Then traffic suddenly picked up at Trade Center around about 8 minutes ki der. Yahan par aapko milne wali. Then there's D75 going towards Dubai Frame also. There is a bit of congestion streak. Rashid Street par. Also first LK Street in Alkuz is a bit busy. Business Bay Metro Station ke aas paas. Jo sadke hai, wahan par traffic milega. And traffic suddenly picked up at E44. And this is all the way from Russell Core Wildlife Sanctuary going up until Business Bay. You'll find a 7 to 8 minute delay.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
12: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
13: उड़ी बाबा.
0: Big 106.2. Of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Fast track song of the hour, aapne suna right here on Big 106.2, the beat of Bollywood, brought to you by SelfDrive.ae, that brings you the most affordable car rental in the UAE right now at just 899 dirhams a month. Sabse zyada affordable hai ye in the UAE. No long-term commitment, no stress, no ownership at all. To aapko bas kya karna hai, gaadi uthani hai, nikal padna hai us drive pe, that is it. It is very, very affordable. In fact, the most affordable, 899 dirhams a month only. So make sure to go search them, SelfDrive.ae, ya par app bhi download kar सकते हो. दिस इज सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.
2: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
3: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी का कोई समझता ही नहीं.
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद जायद रोड, लाइट ट्रैफिक मिल जाएगा वर्का 1K पास, लाइट से मोटर ट्रैफिक आपको मिल जाएगा इफ यू आर ऑन D63 विच इज उम सुकेम स्ट्रीट, अलकूज इंडस्ट्रियल फोर्थ के पास ही आपको मिलेगा कम से कम 7-8 मिनट का डिले. एक कार एक्सीडेंट हुआ है, मेजर कार एक्सीडेंट इनफैक्ट, अलसुफू 1K पास, D94 किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज स्ट्रीट के पास, तो इज कॉजिंग एटलीस्ट अबाउट 12 मिनट डिले एज वेल. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप मैसेज करके बता सकते हैं 4305 पे. दिस इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोरा. It's 10:38 on the big clock.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कितने प्यार से, मतलब इतने अच्छे लिरिक्स लिखे हैं आदित्य रेखारी ने. साहिबा गाने का नाम, राइट ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: यू नो आई ऑलवेज अप्रिशिएट गुड राइटिंग. गुड राइटिंग, मेहनत डालो, एफर्ट डालो, थोड़ा यू नो ऐसा क्रिएटिविटी डालो तो मजा आता है ना, कि यार वाओ कितना सोच के, इतना टाइम लगा के, इतनी इज्जत से किसी चीज को डिस्क्राइब किया गया है. आई रियली अप्रिशिएट दैट. वर्सेस यू नो व्हेन एवर जेन ज़ी डिसाइड्स टू डू एनीथिंग, हर चीज का एक शॉर्ट फॉर्म बना दो, हर चीज का यू नो मतलब वर्ड्स ही नहीं रह जाते, सिर्फ अल्फाबेट्स रह जाते हैं, फिर फिर करने लग जाते हैं, FR, NGL, IK, YK, पता नहीं क्या है ये. सो आई जस्ट वॉज सो फेड अप विद द वे Gen Z स्पीक्स, कि ये पोस्ट देखने के बाद ऐसे दिल किया, अब तो जब भी Gen Z मुझसे इस भाषा में बात करने को आएगा तब मैं ये भाषा में रिस्पॉन्ड करूंगी, विच इज विक्टोरियन स्लैंग. सो बैक इन द डेज हिस्ट्री में जो है हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज किया करते थे, विच ऑनेस्टली इवन आई डेंट नो. अभी ये पोस्ट पढ़ने के बाद मुझे पता चल रहा है, आई फील लाइक अगर मुझे नहीं पता था तो Gen Z को तो कानो कान खबर नहीं होगी कि ये क्या है. बट लेट्स रीड थ्रू टुगेदर, है ना. तो अब बेस्टीज जो हम कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टीज, विक्टोरियन स्लैंग में इसका टर्म है कॉफी सिस्टर्स. यू से कॉफी सिस्टर्स टू समवन हु इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, तो उनको आप बोलो कि शी इज माई कॉफी सिस्टर, है ना. दूसरा टर्म, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता. इफ यू वांट टू से यार ये तो इसके तो बहुत ज्यादा नाटक हो रहे हैं, ये शी इज डूइंग टू मच, यू नो एटीट्यूड बहुत है. You say butter upon bacon. Imagine saying something like this to Gen Z. He's just gonna wonder ki kaun sa bacon, kyun butter dal rahe ho uske upar. But it'll be so interesting. I feel like Victorian slang ko aapko us accent mein bhi bolna chahiye. Without the British accent, it doesn't make sense. You should say, oh, that's just too much butter on bacon. You should say it that way. Only then uska power aata hai. Hai na? Uske baad hai, agar fake news, koi aapko fake news aake spread kar raha hai, koi bakwas aake bata raha hai, use kehte hai evening wheezes. Oh, that is all evening wheezes. It's not true. Hai na? Toh ye fake news hai. Ye bada mujhe interesting laga. This is something that I am. Someone who's always smiling, always laughing, always giggling. Us insaan ko kehte hain giggle mug. Oh, she's such a giggle mug. Ye bata ki cute sa term hai na, giggle mug. Naam hi ita cute sound karta hai. Anyway, if you have a very dear friend, not a bestie, haan. Bestie is coffee sisters. Don't get confused. If you have a very dear friend, unhe kehte hain chakaboo. Ye bird ka naam lag raha hai. But it's चकबू, तो याद रखना ये. एंड देन इफ यू आर वेरी एम्बेरस्ड, आपने कुछ बोल दिया, मे बी यू फॉरगॉट दीज टर्म्स एंड यू मेस्ड अप एंड मेड अ कंप्लीटली न्यू टर्म एंड यू एम्बेरस्ड, यू आर गोना से ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी, आई एम सो पोक्ड अप. पोक्ड अप इज फॉर एम्बेरसिंग. I feel like these terms are so, so interesting and yet so classy. मतलब एकदम silly है but फिर भी इसको एकदम classy तरीके से describe किया गया है. तो next time Gen Z अगर आपको आके ये सारे weird, weird terms से you know बात करने की कोशिश कर रहे हैं, just use these terms and I'm very, very sure they will all be very poked up.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
5: Listen to her every day.
6: Mugambo, khush hua.
7: What do you want to say about this research that says men at work, call it networking or probably strategic updates, but basically it's a fancy aesthetic word for gossip.
8: 200% agree. I used to work in HR.
7: Oh, nice.
8: And I used to have the department heads coming to me asking for everything as what happening in different departments.
7: So yeah, men do come to you and ask about kiski salary badh rahi hai, kaun jo hai is baar promote hone wala and all of that, right?
8: They would try to do and what's happening with that situation that was there. So we know what we need to prepare for the next quarter and next year and all that.
7: So they have a way of getting involved in the corporate politics, but they don't call it gossip, they call it getting updates. Of course, HR has all the gossip. HR and finance people, I think you should be very, very friendly with them. They will give you all the information.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: बर्फ तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली यहाँ पे, लेकिन बारिश हल्की हल्की सी पड़ने वाली है इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, ये प्रेडिक्शन आया है। 38 डिग्री सेल्सियस फिलहाल बाहर, वेरी हॉट, वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए एट 48% पे, लोज विल गो डाउन टू अबाउट 33 लेटर टुनाइट।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक इट्स 12:07 ऑन द बिग क्लॉक। गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोरा।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फायदा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: ए बुड्ढे,
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए,
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 1,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: हाँ जी बिल्कुल सही, ज़ोहरा के साथ ऑन द बिग मिक्स. एक और घंटा रह गया है अंटिल 2. आई कीप यू कंपनी ब्रिंगिंग यू द हॉटेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक अंटिल 2 राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. गुड आफ्टरनून.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई हो, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Tom Sanders. Western Europe is preparing for a heat wave that continues to intensify across the continent. Record temperatures are expected in several countries. On Monday, 18 deaths there were attributed to the heat. Belgium has issued 5 visas to a Taliban delegation to attend a European Union meeting on migration in Brussels. It would be the first time the EU has hosted the Taliban since they seized power in Afghanistan 5 years ago. After the first round of talks with the US in Switzerland, Iran has insisted that it will maintain some control over the Strait of Hormuz. Iran's chief negotiator said the administration of the strait would never be the same as it was before the war. Bangladesh has increased security in the capital Dhaka on the anniversary of the founding of the party of the deposed Prime Minister Sheikh Hasina. All activities of the Awami League have been banned. South Korea has offered to accept North Korean prisoners of war who were captured in Ukraine while fighting for Russia. Seoul said it was trying to facilitate the transfer of soldiers as quickly as possible. Human rights groups in Pakistan have condemned life sentences given to 2 prominent ethnic Baloch activists. The pair were convicted of terrorism and involvement in the killing of a soldier during a protest 2 years ago. US media reports suggest a ransom note sent after the abduction of the mother of the American television presenter Savannah Guthrie claimed that she had died. 84-year-old Nancy Guthrie went missing from her home in January. Some of the World Cup's biggest stars have again demonstrated their goal-scoring skills. Argentina's Lionel Messi, France's Kylian Mbappe and Norway's Erling Haaland all got 2 each. BBC News.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: एक बज के 3 मिनट जोहरा के साथ राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. आई कीप यू कंपनी 4 घंटों के लिए, जिसका आखिरी घंटा जो है वो अभी बच गया है. आई कीप यू कंपनी अंटिल 2, ब्रिंगिंग यू द हॉटेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक. उसके अलावा सम फन कॉन्वर्सेशन, सम टिप्स ऑन फैशन, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, मूवीज कौन सी नहीं आई है. यू नो आई स्पोक अबाउट दिस न्यू शो राख यस्टरडे एंड आई थिंक आई एम स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट मूवी जो मैंने देखी है. बट उसके अलावा कुछ ऐसे नए ट्रेलर्स आए हैं दैट आई हैव मैनेज्ड टू यू नो वॉच एंड आई फील लाइक थोड़ा मैं ओपिनियन अपना शेयर करना चाहती हूँ. साथ ही साथ अ ग्रेट फैशन टिप फॉर यू इफ यू स्टक विथ यू नो नॉट नोइंग व्हाट टू वेयर एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू एज वेल. सो ऑल दैट एंड मोर, दिस आर आई कीप यू कंपनी अंटिल 2. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, यू आर विद मी ज़ोहरा. लेट्स किक स्टार्ट द आवर. मधुबंती बागची उई अम्मा गाने का नाम. मूवी नहीं देखी बट इतना पता है कि इसमें जो जूनियर टंडन जी ने परफॉर्मेंस दिया है वो इज A1.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 degrees Celsius outside, very very hot, very humid. Hopefully that'll change जब थोड़ी बहुत बारिश जो prediction हुआ है वो होने लग जाए यहाँ पे। Humidity फिलहाल 50% पे है, lows will drop down to about 33 later tonight.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurancemarket.ie.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Yes, that's right. With me, Zohra on The Big Mix. Until 2, I keep you company. Filhal, baat ho rahi thi of this new trailer that I've just watched. It's not a trailer. It's actually an official teaser. Now, every production house, I feel, has a favorite. ना हैज़ अ फेवरेट एक्टर और एन एक्ट्रेस टू कास्ट. ऐसे डायरेक्टर्स के भी फेवरेट होते हैं. जैसे मैंने उसी दिन इम्तियाज अली से जब बात की, उनसे पूछा था कि दिलजीत हैज़ नाउ बिकम योर फेवरेट, हर मूवी में आपका दिल करता है उन्हीं को कास्ट कर लो. वैसे आई फील लाइक मैडॉक फिल्म्स की फेवरेट इज श्रद्धा कपूर बिकॉज ऑफ यू नो द मैसिव सक्सेस 3 जो बनी, उसके बाद 3-2 एंड ऑल दीज. वी नो दैट श्रद्धा कपूर इज़ अ फेवरेट. आई जस्ट वॉच द ऑफिशियल टीजर फॉर ईठा. Now, I'm not sure what the word means. I'm trying to Google it over here right now. मैंने कुछ अपने जासूसों को लगाया है इस काम पे. ईठा का मतलब कुछ पता चला है? शिरीन यहाँ पे हमें मदद करने के लिए. विठला इन मराठी. ईठा इज अ फोनेटिक रीजनल डायलेक्ट वेरिएशन ऑफ द नेम विठला. ओ सो इट्स लाइक अ वर्जन ऑफ द नेम विठल. ओके इंटरेस्टिंग. हाँ सो बेसिकली ईठा ये आ रही है. इट इज़ बेस्ड, इट्स बेसिकली लूजली इंस्पायर्ड रियल लाइफ स्टोरी से. इट क्रॉनिकल्स अराउंड द रियल लाइफ स्ट्रगल्स एंड वॉट ऑल शी हैड टू फेस. लेजेंडरी महाराष्ट्र तमाशा एंड लावनी आर्टिस्ट विठा भाई नारायण गांवकर. आई थिंक विठा भाई से आता है ईठा. इट वॉज लाइक अ स्लैंग नेम दैट शी गॉट फ्रॉम पीपल हु वर अ फैन ऑफ हर्स. एंड इस पे कास्ट किया है श्रद्धा कपूर को. नाउ A lot of people think that Shraddha Kapoor is this cute si ladki, you know, rom-com type ke roles karti hai. एंड यू नो तू झूठी एंड वो वगैरह जो मूवीज़ थे उसमें जो उनका कैरेक्टर था. बट शी इज़ वेरी वेरी केपेबल आई फील. एंड ये टीज़र देख के तो इट विल डेफिनेटली चेंज योर माइंड बिकॉज शी इज़ आई थिंक पुट आउट हर 200% ओवर हियर. इतना पावर दिख रहा है उस कैरेक्टर में. देयर इज दिस वन डायलॉग जो एंड में आता है विच आई थिंक वाओ दिस डायलॉग इज इनफ टू गेट यू हुक्ड राइट.
3: पान में पान चखना हो तो मीठा और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा.
2: तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा. आई थिंक ऑल्सो बिकॉज यू नो शी इज सच अ गुड डांसर. यू सीन हर इन स्ट्रीट डांसर इन ऑल ऑफ दोज मूवीज. इफ शी कैन डू दैट एंड यू थॉट दैट दैट्स द ओनली थिंग शी कैन डू, यू गॉट टू रिकन्सिडर योर वर्ड्स बिकॉज ये टीजर देखने के बाद इट विल चेंज योर माइंड. इफ यू नॉट सीन इट येट मेक श्योर टू गो चेक इट आउट. ईठा का ऑफिशियल टीजर आ चुका है यूट्यूब पर है. इट इज आई थिंक रिलीजिंग ऑगस्ट में, August 28th इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट यूजली आई एम नॉट अ फैन ऑफ बायोपिक्स बट आई थिंक फॉर श्रद्धा कपूर एंड बिकॉज इट इज अ मैडॉक फिल्म्स मूवी आई माइट जस्ट वॉच इट.

0: मिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्ग कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लो।
1: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetour UAE, part of Elite Group Holding.
2: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
1: Listen to her every day.
3: Mugambo! खुश हुआ।
4: Are you excited? कल से बारिशें हो सकती हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि बारिश हो।
5: No, please, we need rain.
4: No, I'm a new driver से देश। अभी मैं normal मौसम में गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रही हूँ। Please, मुझ पे बारिश ना करवाओ। Please.
5: कैब लेके जाओ यार।
4: ये देखो, गाड़ी का रेंट भी बंदा दे, ऊपर से कैब पे भी खर्चा करे। सही बात है, देखो जो दिखता है वो होता नहीं है। मेरे हाल भी वही है जो आपके हैं। नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे बारिश, बिल्कुल नहीं चाहिए। सर मैं ना बर्षा से आती हूँ और वहाँ पे जो है कभी कभार लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो मैं थोड़ा डरती हूँ उस एरिया में। बट आई जस्ट होप इफ इट रेन्स वी हैव वर्क फ्रॉम होम, दैट्स व्हाट आई कैन मैनिफेस्ट।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स शारजा, E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा तुवार 1 के पास। उसके अलावा हैवी ट्रैफिक ऑन E44 अल खैल रोड, इफ यू आर क्रॉसिंग दुबई हिल्स एस्टेट, वहां पे आपको मिलेगा हैवी ट्रैफिक, एटलीस्ट अबाउट अ 16 टू 20 मिनट डिले ऑन दैट रोड। एक कार एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है D72 अलसाइल स्ट्रीट पे, दिस इज अराउंड अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 4, वहां पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, अबाउट अ 12 मिनट डिले ऑन दैट रोड। अनदर कार एक्सीडेंट ऑन D65 मराबिया स्ट्रीट आपको मिल जाएगा, वहां पे भी 10 से 12 मिनट का डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप बता सकते हैं 4305 पे।
1: सेल्फ ड्राइव डॉट ए नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

कॉकटेल टू से बंधु 2.0 आपने सुना ऑन द बिग मिक्स विद दैट इट्स माय टाइम टू टेक योर लीव. मेरी आवाज मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो यू नो व्हाट यू गॉट टू डू इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो. ज़ोहरा अमीन इज माय हैंडल ओवर देयर. आई विल नाउ सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 से 2 के बीच ऑन द बिग मिक्स. एंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: Eid Yunge, King Khan, Yo Yo Honey Singer.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
4: ये है उज्जवल on the Big Life. Only on Big 106.2.
1: The beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Fast Track Song of the Hour brought to you by Self Drive. आपने सुना तो एकदम intense song. In fact, इस मेरी वार्तालाप के बाद भी एक बहुत ही बड़ा intense song आने वाला है नंदिनी स्पीकर की आवाज में. But right now, let's focus on this very intense खड़ा मसाला, spice, whole spice, which is so popular. And जो fragrance, जो उसकी खुशबुएं हैं, वो एक बारी अगर आप खाने में बना लो, पका लो, तो उसके बगैर तो मतलब आपको लगता है कि the entire house is like smelling of that खड़ा मसाला.
0: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Food trails mein aaj baat ho rahi hai about this fragrant bark ki. I'm a strip of wooden skin, rough outside but sweet within. I do not leaf, I do not bloom, but fill the biryani with perfume. Drop me in oil to stuff the pot, a spicy bark that's fiercely hot. Which is this masala? Correct answer is... सिनेमन, दालचीनी. यस, पुलाव हो गए आपके, या फिर कोई भी भारी सब्जी हो गई, पनीर, कढ़ाई या पनीर, बटर चिकन, मटन, शटन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सिनेमन इज यूज. सिर्फ एक बार्क इज इनफ फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ गिव दैट इंटेंस अरोमा टू योर फूड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दालचीनी बहुत बहुत रेयरली, हर जगह कल्टिवेट नहीं होती है, जहाँ पे होती है वहाँ पे एक्सटेंसिव होती है, लेकिन रेयर एरियाज होते हैं फॉर दालचीनी टू बी सॉर्ट ऑफ कल्टिवेटेड. एंड बात करूँ अगर खाने की, तो फ्लेवरिंग एजेंट, जब मेरी बीवी सिनेमन रोल्स बनाती है, यू नो, और शी डज सिनेमन केक्स, यू नो, इन माई हाउस, जो वो खुशबू है उसकी, वो कमाल होती है. इनफैक्ट यू नो, यू यूज़ इट इन टी एंड कॉफीज. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ गरम मसाला इंग्रीडियंट इन करी पाउडर्स एज वेल. बात करूँ अगर कॉस्मेटिक एंड अरोमाथेरेपी की, तो वहाँ पे भी स्किन केयर और हाइजीन में, यू नो, सिनेमन जो है वो यूज़ होता है इन योर लिप बाम्स, इन योर डेंटल प्रोडक्ट्स, जैसे माउथ वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसेंशियल ऑयल्स आ गया, तो उसमें भी अरोमाथेरेपी में भी ये यूज़ होता है टू सॉर्ट ऑफ रिड्यूस योर स्ट्रेस, यू नो, काम द माइंड एंड इम्प्रूव योर कॉग्निटिव फंक्शनैलिटीज एज वेल. डिओड्रेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, इंसेक्ट रेपेलेंट्स, नेचुरल क्लीनिंग में भी, अगर आपको DIY कुछ करना है, उसमें भी सिनेमन एक्सटेंसिवली यूज होता है. इट्स सच अ फैसिनेटिंग, यू नो, नेचुरल प्रोडक्ट दैट्स गिवन अस बाय द मदर नेचर. थैंक यू वेरी मच सुभांशी फॉर गिविंग यू आंसर. आई एम गिविंग यू दिस सॉन्ग. दिस इज फ्रॉम माई साइड टू यू. द ट्रैक इज दुआ, नंदिनी स्पीकर की आवाज आपके साथ अंटिल 5. आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ, बिग 106.2 पे. वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 105.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: The man who never ceases to say, "I am old," I'm talking about Anil Kapoor, sir. What a man, what a legend. And today he posted on his Instagram, 43 years hue wo saat din ko, to maine socha ki aaj Anil Kapoor saab special karte hain. And ye film bahut special thi, 1942, A Love Story. Unke career ke liye, halaki he was very apprehensive of doing this film because unhone kaha, yaar ye main kar nahi sakta. Matlab, this is not something that I am, you know, bahut hi ek soft sa aadmi. And, you know, the romance is mushing. Vidhu Vinod Chopra ki film hai, there was a lot at stake. And initially he said, "No, I can't do this."
0: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: And then I think it was his wife who actually convinced him, "Ki aapke karo and you will look nice." And then of course he did a lot of alterations to his personality, cut his hair, trimmed his beard, jo daadi ke saath saath mooch thi wo bhi katai, so he had to look like a boy, you know, and that's what he did, of the 90s boy. And then, you know, when everything was done, finalized, Madhuri was supposed to do this film. And then Madhuri said, "No, I can't do this. Look tests were." And she said, "I'm completely busy right now. I can't do it." And then came in Manisha Koirala. In fact, ye jo gaana apne sunaye ladki ko dekha, ye Javed sahab ne Madhuri ko dimag mein rakke hi likha tha. And then Vidhu Vinod Chopra said that, you know, it's not Madhuri, but it is Manisha Koirala. But how did she actually get to come to this movie? Have a listen.
2: विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म आई, मुझे आई नहीं थी एक्चुअली, वो स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे
3: 1942 अ लव स्टोरी।
2: तो जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था तो विनोद ने यू नो कहा था कि तुम्हारा इसमें अच्छा नहीं जम रहा है। तो मैंने विनोद को बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक मौका और दीजिए। और मुझे बिल्कुल कुछ समझ वमझ था नहीं कि एक्टिंग अच्छी क्या होती है क्या नहीं। मैं तो मतलब कि अंधाधुन काम कर रही थी मैं, बिना ज़्यादा कुछ समझे और एक्टिंग के बारे में। हालांकि मैं बचपन से ही फिल्में देखती थी और मेरी क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट आई लाइक्ड वो अर्थ, मासूम, लिटिल बिट ऑफ आर्टिस्टिक सिनेमा, बट समहाउ आई डिड नॉट नो द एक्टिंग बिट। And I was flowing with the tide, you know. So in when Vinod challenged that, which was a great, कभी कभी किसी को ना वो जरूरत पड़ता है, मुझे जरूरत हमेशा पड़ती है।
3: और विदु विनोद चोपड़ा हमेशा words mince नहीं करते, जो है वो सीधा बोलते हैं।
2: Exactly, he's a straightforward person. And to me, that opened the door to start searching what is good acting. एंड देन मैंने तो फिर उस दिन जब मैं घर गई तो पूरे डायलॉग रट लिए ऐसे कि मतलब कि एक या दो पेज की डायलॉग थी तो मैंने कुछ करोड़ों बार किया होगा। मुझे जैसे मैं गई 24 घंटे में मैंने आई डिडंट स्लीप, आई डिडंट ईट, नथिंग, मुझे भूत सवार हो गया था। और मैं बस उसी को, मैंने कहा इसी में मुझे ढूंढना है, अच्छी एक्टिंग या बुरी एक्टिंग जो भी है मुझे इसी में मिलेगा। तो मैं बस उसको करती गई करती गई करती गई करती गई। और नेक्स्ट डे ना मेरे मुझे किसी टीचर ने कहा कि ऐसे करते हैं, ना मुझे किसी ने गाइड किया कैसे करते हैं, बस जो डायलॉग थे उसको मैंने 24 घंटे उसी पे ही ध्यान दिया। तो नेक्स्ट डे जब मैं गई तो विनोद ने कहा कि तुम अगर कल जीरो या माइनस थी, आज 100 हो।
1: वाओ,
2: मैं तो आई वाज लाइक
1: परसिवेरेंस, परसिस्टेंस। और ये फिल्म आइकॉनिक बन गई, कल्ट बन गई, आज भी कल्ट है। That's what the impact of Anil Kapoor films and of course the big banner is. Do aur filmon ke gaane main play kar raha hu jo iconic thi. Ek to Judai se gaana aane wala hai, Mujhe Pyar Hua, Love Me Again, great film. And uske baad aayegi Biwi Number 1 se, ye bahut chatpati si ek dhun. The track is Hi Hi Mirchi. Stay locked on to Big 106.2. Ujjwal Khanna ke saath, we are the beat of Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गोल चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गोल चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Song of the Hour brought to you by Insurance Market. Ujjwal Khanna ke saath Big 106.2 pe 4:18 minute ho rahe hain. TMO bhi bolne ka mauka milega. TMO bolne ke baad videos. और बहुत सारा इंस्टाग्राम मेमोरी वो भी क्लिक करने का मौका मिलेगा क्योंकि गर्मी इतनी है. वी रियली नीड सम सरप्राइज इन आवर लाइफ एंड दिस सरप्राइज कम्स विद लॉट ऑफ शबैंग.
2: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: एंड व्हेन यू गेट सरप्राइजेस विद शबैंग यू नो द आंसर इज ये हुर्रे. वेल इस समर बिग 106.2 इज गिविंग यू द अल्टीमेट स्टेक है ऑन बिग समर सरप्राइजेस प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस अलमायरिद रसल खेमा. Get ready to win a family staycation at the stunning Rixos Almayrid in Ras Al Khaimah. Perfect to relax, unwind and make memories. You can chill by the pool, feast on great food and beat the heat in style. Plus a chance to win daily prizes worth 500 dirhams including movie tickets, F&B vouchers every single day. Participate karne ke liye aapko sunna hai the big breakfast subah se ke saath and the big thrills sham ko Mansi ke saath. And then you have to type, go to your WhatsApp, type BSS, B for बॉम्बे एस एस बिग समर सरप्राइज एस एस बी एस एस अपना नाम और व्हाट्सएप कीजिए ऑन 054-309-1062 बिग समर सरप्राइजेस प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस अलमायरिद ओनली ऑन बिग 106.2 द ट्रैक इज बल राइट नाउ के आवाज आपके साथ अंटिल 5 दिस इज द बिग लाइफ.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: Today's weather update, sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
3: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
1: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ।
5: Are you excited? कल से बारिश ही हो सकती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि बारिश हो।
6: No, please, we need rain.
5: No, I'm a new driver से देश, अभी मैं normal मौसम में गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रही हूँ। Please, मुझ पे बारिश ना करवाओ। Please.
6: कैब लेके जाओ यार।
5: ये देखो, गाड़ी का रेंट भी बंदा दे, ऊपर से कैब पे भी खर्चा करे। सही बात है, देखो जो दिखता है वो होता नहीं है। मेरे हाल भी वही है जो आपके हैं। नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे बारिश, बिल्कुल नहीं चाहिए। सर मैं ना बर्षा से आती हूँ, और वहाँ पे जो है कभी कभार लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो मैं थोड़ा डरती हूँ उस एरिया में। बट आई जस्ट होप इफ इट रेन्स वी हैव वर्क फ्रॉम होम, दैट्स व्हाट आई कैन मैनिफेस्ट।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: गुड इवनिंग टू यू, बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं आप। ट्रैफिक अपडेट वेरी क्विकली, अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 4th के आसपास हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। वहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है, दैट्स व्हाट्स बीइंग टोल्ड टू मी ऑन वेज, सो आप वो एरिया अवॉइड कर सकते हैं। बात करूँ शेख जायद रोड की, लुक्स फाइन राइट नाउ। थोड़ा सा डाउन टाउन दुबई के आसपास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, DIFC के आसपास थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने वाला है। मूविंग ऑन फर्दर टूवर्ड्स अलनादा, ट्रैफिक वहाँ पे स्लो मूविंग है। अलतिया स्ट्रीट इफ़ यू आर गोइंग एंड इफ़ यू आर शारजा बाउंड, वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा। किस इंडस्ट्रियल एरिया 4th के आसपास आपको मिलेगा ट्रैफिक। शारजा रिंग रोड ऑल्सो लुक्स चॉक ब्लॉक राइट नाउ। D97 अम्मान स्ट्रीट के आसपास भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। एनी द ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4305 व्हिच इज 4305।
1: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

It is. माना कि हम यार नहीं. From the film मेरी प्यारी बिंदु, परिणीति चोपड़ा एंड सोनू निगम टुगेदर इन दिस डुएट उज्ज्वल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे. टाइम टू रैप इट अप फ्रॉम माय साइड एंड ऑफ कोर्स प्लीज कीप लिसनिंग टू अस ऑन बिग 106.2 बिकॉज अप नेक्स्ट कम्स इन मानसी विद द बिग थ्रिल. जब वो आती हैं शी ब्रिंग्स इन ऑल द एक्साइटमेंट फ्रॉम 5 टिल 9 गिविंग यू अ डोज ऑफ द समर सरप्राइज एज वेल दैट इज हैपनिंग फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली ऑफ चांस ऑफ विनिंग फूड वाउचर्स उसके अलावा मूवी टिकट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेकेशन. सो ऑल यू गॉट टू डू इज कीप लिसनिंग टू हर. Comes in say about 5 minutes from now and she helps you understand what is this big summer surprise that's happening on Big 106.2. You can keep following us as well on the same handle 106.2 Big FM for all the content that we do on our digital, on our socials. Wrapping it up from my side, I'll see you tomorrow sharp at 2 o'clock from 2 till 5 on Big 106.2. We are a part of Fun Asia Network.

0: दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.ae.
1: Big 106.2. That's my song by E. And.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetor UAE. Part of Elite Group Holding. T&Cs apply.
1: Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE. Part of Elite Group Holding.
3: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE. Trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 37 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 33, ह्यूमिडिटी फिलहाल 59% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: गए।
1: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
3: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill. Mansi, we're playing the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I give you a few categories. Teen cheeze aapne batani hoti hai 5 seconds ke andar. Joining us is Abdul. Hi, Abdul.
2: Hi, Mansi. How are you?
1: I'm good. How are you?
2: I'm doing good. Thank you for asking.
1: How sweet. Such a gentleman. Abdul, I want to ask you a very important question. How do you like your Maggie?
2: I like it hot.
1: Nahi, everybody likes it. Most of the people like it hot. But soupy or dry?
2: Soupy one.
1: Soupy one, you know the story jahan pe girlfriend and boyfriend ka breakup ho gaya because the guy made her soupy Maggie and she likes dry Maggie. So would you ever break up with someone because they don't eat the way you eat the Maggie or you like Maggie?
2: No, of course not. Of course not for this reason. But this reason is such a silly reason, no?
1: I know, but Maggie is a very important relationship food.
2: Yes.
1: So, but you will...
2: I agree.
1: हाँ तो बट आप छोड़ देंगे ना सूपी मैगी खाना प्यार में.
2: Yes, I can. I can give up soupy Maggie.
1: जो आपके लिए अपने मैगी खाने का अंदाज बदल दे वही आपका सच्चा प्यार है. फिलहाल अब्दुल हो गया आपको सच्चा प्यार के झूठा वाला ही चल रहा है?
2: नहीं, हो गया.
1: सो स्वीट, यू सो शाय. बड़ा मजा आएगा आपके साथ खेलने में. इट्स कॉल्ड द 5 second रूल. आई विल गिव यू फ्यू कैटेगरीज. आपने तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर. ऑल द बेस्ट अब्दुल.
0: 5 second रूल.
3: ओह यस.
1: Quickly name three things that you should never ever put in your Maggie.
2: Masala.
1: Hai?
2: Masala, sugar.
1: Ek second, sugar is fine. Masala kyun nahi daloge? Masala hi to main hai.
2: Yes, sorry.
1: अरे ये मत करना, मतलब इस चक्कर में ब्रेकअप हो सकता है. उबली मैगी कोई नहीं खाएगा. मूविंग ऑन. 3 सलमान खान की मूवीज. राधे. फटाफट खेलना है. 5 second ऐसे निकल जाएंगे. आप सोच बहुत रहे हैं, बिना सोचे खेलो. 3 things that you find only at an airport. हवाई अड्डे पर.
2: चेक-इन काउंटर, बैगेज काउंटर, चेक-इन
1: काउंटर, बैगेज काउंटर. 3 things that are white in color and आप खा सकते हैं.
2: Radish,
1: rice. Oh, nice.
2: And rice.
1: 3 गाने जिनमें दिल आता है.
2: दिल तो पागल है, और? दिल दीवाना है.
1: हैं? एक ही गाना में टाइम खत्म हो गया. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, एक ही गाना है ब्रदर. 3 ऐसी चीजें जो आप प्यार में गिव अप कर देंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे अगर सामने वाले ने बोला.
2: मनी, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप.
1: अच्छा, यू विल लेट गो ऑफ योर फ्रेंड्स.
2: Yes, anything for love.
1: Hi, so sweet. बंदे ने गेम बहुत खराब खेला है, बट ये ग्रीनेस्ट ऑफ द ग्रीन फ्लैग है.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Whoever is in a relationship with you, Abdul, is a very, very lucky girl.
2: Thank you.
1: बहुत खराब खेला है आपने गेम, बट मजा आया आपसे बात करके.
2: Me too. I liked it. I enjoyed it a lot.
1: How sweet. You're such a gentleman. Bye.
2: Bye.
1: ये 5 second रूल आपने खेलना. एक ही रूल है, पहले तो 5 second के अंदर जवाब देना है, दूसरा मुझे कॉल करना है 800-1062 पर.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, this is The Big Thrill. Mansi, we're playing the 5-second rule. Joining us is Zeenat. Hi, Zeenat.
2: Hi, Mansi. How are you?
1: I'm good. Where are you stuck? Don't tell me Sheikh Zayed Road.
2: No. I'm close to Motor City. Just gone for my vehicle testing. Now heading home.
1: Are wow, nahi gaadi liya aapne?
2: Nahi, renewal hai.
1: Achha. Filhal, Zeenat. बहुत इम्पोर्टेंट सवाल. हाउ डू यू लाइक योर मैगी?
2: आई लाइक इट सूपी.
1: बट आई एम श्योर यू नो द स्टोरी बाय नाउ दैट देयर वाज अ मेजर ब्रेकअप बिकॉज़ द गर्ल लाइक ड्राई मैगी, द गाय मेड सूपी मैगी एंड शी ब्रोक अप विद हिम. वुड यू एवर ब्रेक अप विद समवन इफ दे डोंट ईट मैगी द वे यू ईट?
2: आई डोंट थिंक सो, बट आई फील आई एम क्वाइट लकी इन दैट वे बिकॉज माय हस्बैंड लाइक्स द मैगी सूपी एज वेल.
1: मैं कह रही हूं ना, कुंडली मिले या ना मिले, मैगी कैसा बनना चाहिए वो अगर मिल जाए देन आई थिंक लाइफ इज सॉर्टेड. क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. रात को 2 बजे कहाँ बंदा ड्राई मैगी, सूपी मैगी ये सब बनाता रहेगा. तो अच्छा है उनको सूपी मैगी पसंद है. तो ये आपने पहले डिस्कस किया था बिफोर यू गाइस टाइड द नॉट?
2: नो, बट कोइंसिडेंटली फूड चॉइसेस मैचेस very well.
1: Soulmates. Filhal, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories, Zeenat. 3 cheeze batani hai 5 second ke andar. All the best.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly name 3 things that are green in color and you can eat.
2: Leafy vegetables, spinach, peas.
1: Time khatam. Almost there. Fatafat, thoda aur fast. 3 food items that start with the letter B.
2: Broccoli, beetroot.
1: Bread, banana, biscuit. Bahut sare. 3 रवीना टंडन की मूवीज. अच्छा, 3 ऐसी बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम, द वर्ड हम आता है.
2: हम आपके है कौन, हम तुम, हम आप, हम साथ साथ है.
1: नॉट बैड. 3 एनिमल्स जो आप घर पे एज पेट्स रख सकते हो.
2: रैबिट, फिश, डॉग, कैट.
1: अच्छा, 3 ऐसे रीजंस जिस को लेके यू नो यू फाइट विद योर हस्बैंड.
2: हिज टाइम, हिज द वे ही स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन द वॉशरूम.
1: टाइम खत्म हो गया. 3रा क्या था?
2: द टाइम ही टेक्स इनसाइड द वॉशरूम.
1: वो तो एक ही हुआ, बाकी 3 क्या है?
2: लाइक द वे ही यूजेस हिज फोन ऑल द टाइम.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurersmarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, yeh hai Big Thrill. Main hoon Mansi and we are playing the 5-second rule. It's a fun game. Aapko milte hain 5 second. Main aapko deti hoon kuch categories. Teen cheeze aap batate hain 5 second ke andar. Filhal, Shan, the angry young man. To aap yeh sab ke saath itna serious hoke baat karte hain ki aaj kuch special hai, Shan.
3: No, it's nothing like that. I was just driving, so I thought I would call you.
2: Yeah, so cute. You know, the very old trick. Ladkiyan bahut impress hoti hain.
3: Really?
2: Haan. Jo aise ekdam mysterious, serious type ke ladke hote hain na, aisa lagta hai ki haan, we get very attracted to them. Hoti hongi na ladkiyan aapse impress?
3: Yeah, I get that a lot.
2: Yeah. Oh, kyun hai aisa? Ye baat kyun nahi karta hai? Kya ye apne dil ki sari baatein mujhse karega? Ye sirf tactics hoti hai ladkiyon. ये सिर्फ पुरानी ट्रिक्स हैं, इसमें नहीं फंसना है. शान जो है फंसा लेगा फिर, है ना शान?
3: जी जी.
2: ये देखो खुद ही कह रहे हैं जी जी. करते हैं क्या आप?
3: Now I work in a sports media company.
2: Sports media company, very very nice. How's the work?
3: Yeah. It's good.
2: Very nice. तो आप करते क्या हैं? आपको प्रेजेंट करते हैं या फिर सेल्स
3: करते हैं? It's like production, live production of matches.
2: अरे very nice. Very very nice. Interesting काम है आपका. फिलहाल हम खेलेंगे 5-second rule. आपको मिलेंगे 5 second. मैं आपको कुछ categories दूंगी. यहाँ पे जो है अपना वो serious mysterious side जो है side पे रखना. फटाफट खेलने वाला game है, ठीक है?
1: Five-second rule. Oh yeah.
2: तीन चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, शान, और आप खा सकते हैं.
3: एप्पल, पियर,
2: ओके,
3: पियर और मटर.
2: नॉट बैड. क्विकली टेल मी तीन सलमान खान की मूवीज.
3: रेस 3.
2: वो भी ढूंढ के निकाली है 5 second के बाद. अच्छा, तीन ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
3: I like you.
2: अरे, I like you.
3: Your eyes are beautiful. Your
2: टाइम ही नहीं शुरू होने दिया. ये मैं कह रही हूँ, ये लड़का प्लेयर है, ये लड़का प्लेयर है. हाँ, मुझे पता है शान, ये प्लेयर है. देखो, इसको 1 second नहीं लगा है. तीन ऐसे झूठ, शान, जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो. देखा, अब नहीं बताएगा. ये पोल नहीं खुलने वाले हैं. ये बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में. 3 things that you find only at a beach.
3: Sand.
2: और
3: fish. Fish और वो पत्थर जो होते हैं white उनको पता नहीं
2: क्या कहते हैं. Shells कहते हैं उनको.
3: Shells.
2: तीन बॉलीवुड गाने जिनमें the word दिल आता है.
3: दिल का क्या करें?
2: साहिब आगे.
3: दिल आपका हुआ.
2: ऐसा कोई गाना नहीं है, ये तुम बनाते होगे लड़कियों के लिए, है ना?
3: You know, मैं इतने टाइम से सुन रहा हूँ, मुझे लगा कि ये बहुत इजी होगा. इट्स नॉट इजी. I admit now.
2: So sweet. फिलहाल आपकी पोल भी खुल गई है. That also you should admit.
1: 5 seconds.
2: But मजा बड़ा आया शान आपसे बात करें. तो at the moment आप कितनी लड़कियों की झूठी तारीफ कर रहे हैं?
3: Seriously, I don't have a count.
2: ये देखो. डेंजर है ये लड़का. डेंजर शान.
3: You know, it is what it is. इधर UAE में कोई सीरियस नहीं होगा आपको. डेटिंग के लिए कोई सीरियस नहीं मिलेगा, स्पेशली दुबई में. You know that, right?
2: How do I know that? I'm a very serious person. But Shan, it was lovely talking to you. You have a great evening. It was so much fun talking to you.
3: You too, man.
2: Bye. ये 5 second rule, एक ही rule है खेलने का. मुझे call करना 800-1062 पर.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: ये लो, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं कि मैंने माइक ही नहीं ऑन किया है। गुड इवनिंग, मैं हूँ मानसी, दिस इज द बिग थ्रिल। आई कीप यू कंपनी अंटिल 9 विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक। मैं आपके पैसे बचाने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, बिकॉज वी आर ऑल इनटू सेविंग्स, राइट? इफ यू विल सेव, आई विल सेव, देन वी कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू रेंट अ कार, बिकॉज आई हैव रेंटेड अ कार, यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ यू रेंटेड फ्रॉम selfdrive.ae। एग्जैक्टली, अगर आपको भी लगता है कि कार रेंटल्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग स्माइल आपके चेहरे पर, बिकॉज selfdrive.ae हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द UAE राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। एग्जैक्ट, सही सुना, 899 दिरहम्स अ मंथ। एट दिस प्राइस पेइंग मोर जस्ट डजंट मेक सेंस, राइट? देयर इज नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नो स्ट्रेस एट ऑल, जस्ट पिक योर गाड़ी एंड ड्राइव। बहुत सिंपल है। लुक फॉर selfdrive.ae, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। Self drive, your car, your prize, your way.
0: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही, तेरे बाप का माल है।
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. We are playing the 5-second rule, but we're also giving you a chance to win a staycation. It's time for the big summer surprises. Aashram, aapke paas mauka hai apna naam draw mein dalne ka, wherein you might win a staycation. But for sure, agar aap game jeete hain, you're walking away with open movie tickets and food vouchers. Very, very simple to register BSS, your name. WhatsApp karna hai 0543091062 par. Filhal on the phone lines, maine inse naam hi nahi pucha kyunki zindagi mein bahut kam aise log hain jo meri tareef karte hain. Meri personal maa bhi bahut kam gikka dukka baar meri tareef karti hai. To inhone phone uthate hi itni tareef kari ki main naam hi puchna bhul gayi aapka. Carried away ho gayi thi main.
2: Hi, Rajesh this side. No, you really deserve it. You really deserve it.
1: Ye aapki tarah zamana kyun nahi sochta hai, Rajesh?
2: नहीं, देखिए अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए.
1: और वो कहते हैं ना, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है. मैं हीरा राजीव जौहरी. अगर आप नहीं कदर कर पा रहे हैं तो इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम.
2: इस हीरे को नजर ना लगे. टुडे वी आर लिविंग इन अ स्ट्रेसफुल वर्ल्ड, सो इफ समवन कैन ब्रिंग अस इन अ स्माइल फॉर अ मोमेंट ऑन समवनस फेस, दिस इज मोर देन एनीथिंग.
1: हाउ स्वीट राजीव, हाउ स्वीट. अगर आप सिंगल होते तो मैं आपका हाथ मांग लेती इसी बात पे. सारी जिंदगी बस yes. मैं तारीफ सुनती रहती अपनी.
2: बहुत देर हो गई.
1: फिलहाल विल प्ले द 5-second rule, sir. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm sure you know the rules. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. Are you ready?
2: Yes.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: तीन चीजें जो येलो कलर की होती है राजीव, आप खा भी सकते हैं.
2: केसर बर्फी, बर्फी और रबड़ी.
1: रबड़ी येलो नहीं होती है, हो भी सकती है, बट आप बहुत डिले पे चल रहे हो. आपको शायद मेरी आवाज 5 सेकंड लेट आ रही है. फटाफट खेलना है, ये आप स्लो बोल रहे हो. तीन गोविंदा की मूवीज. गोविंदा,
2: गोविंदा राजा बाबू.
1: हो गया राजा बाबू, 5 सेकंड फटाफट खेलना है सर. अच्छा, तीन ऐसी चीजें जो आप बीवी को मनाने के लिए करते हैं.
2: चाय बनाता हूँ, बहुत अच्छी खाना बना लेता हूँ.
1: टाइम खत्म हो गया है. मैं कह रही हूँ आपके और मेरे ना कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन में कुछ डिले है, क्योंकि आप 5 सेकंड के बाद शुरू कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके और मेरे बीच में नेटवर्क की दरार आ गई हो. या अब तो गायब सर. आज शायद सिर्फ मेरी तारीफ सुनने का मुहूर्त था, आपके खेलने का मुहूर्त नहीं आज, क्योंकि आपके और मेरे बीच में नेटवर्क जो है वो आ गया है. बट राजीव, थैंक यू सो मच. वैसे भी साल में एक आध बार कोई मेरी तारीफ करता है, उसके बीच में ही नेटवर्क कटना था. ऐसे कहते नजर लगना. फिलहाल व्हेन आई कम बैक, गिविंग यू अ चांस टू विन समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग. इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. स्टे राइट हियर, दिस इज द बिग थ्रिल ऑफ मानसी.

0: बुड्ढे
1: नमस्ते।
0: पहले आप आदर कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आप गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है, देखिए।
1: ये गुस्सा नहीं है। 106.2

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill, I'm Nancy, and yahan par it's time for the big summer surprises wherein you have a chance to win yourself a staycation. Aapka naam draw mein jayega and agar aap ye game jeet jate hain to right now aap jeetenge two open movie tickets and F&B vouchers. Very very simple, if you want to participate, you want to register, WhatsApp karna hai BSS apna pura naam 0543091062 par Pankaj and Manish ki tarah. Good evening.
2: Good evening.
1: ये जो भी है पंकज जी या मनीष जी नेटवर्क में नहीं है तो आप ये गेम खेल ही नहीं पाएंगे.
2: मैं नेटवर्क में हूँ.
1: नहीं, मैं कौन?
2: मनीष.
1: पंकज,
3: मैं भी नेटवर्क में हूँ.
1: अब आ गए हैं दोनों नेटवर्क पे. ये देखा, स्टेकेशन के नाम पे सब नेटवर्क में आ जाते हैं. वैसे कोई लड़की बात करे तो बंदा बोलता है आउट ऑफ नेटवर्क हूँ, कल कॉल करूंगा. फिलहाल पंकज जी, आपका नाम बड़ा अच्छा है, पंकज त्रिपाठी. मेरे फेवरेट एक्टर है वो.
3: जी जी जी, बिल्कुल बोलिए.
1: तो आप पंकज त्रिपाठी के फैन हैं?
3: जी बिल्कुल.
1: हाँ, तो आप ऐसे लड़कियां गलत डीएम नहीं कर देती है कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर फिर पता चलता है ये तो दूसरा पंकज त्रिपाठी है.
3: नहीं नहीं नहीं मानते, ऐसा तो है नहीं, बट ऑफकोर्स फोटो तो अलग ही. मतलब ये है कि नाम के नाम से मतलब बहुत अच्छा कमेंट मिल जाता है.
1: हाँ, मतलब बड़े मजेदार हैं. वैसे आप भी मजेदार ही लग रहे हैं. बहुत सिंपल है मनीष और पंकज, इफ यू गाइस वांट टू विन अ स्टेकेशन दिस समर, वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू वर्क हार्ड. वी प्ले अ गेम, इट्स कॉल्ड द वेकेशन वर्ड गेम. मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी जो जंबल्ड होंगे, दे आर रिलेटेड टू हॉलीडे, टू वेकेशन डेस्टिनेशन. आपने गेस करना है वर्ड क्या है, मतलब मिसिंग लेटर्स जो है वो जोड़ के वर्ड बताना है. ठीक है?
3: जी जी बिल्कुल.
1: कौन पढ़ाता है बच्चों को घर पे, मनीष के पंकज?
3: पंकज पंकज.
1: आप पढ़ाते हैं? मनीष आप नहीं पढ़ाते बच्चों को?
2: हाँ,
1: ये टफ होने वाला है फिर आपके लिए, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मनीष. चलो जवाब देने

0: के लिए आपको पहले बोलना है बिग मनीष बिग पंकज. अगर आपने ये नहीं बोला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ठीक है?
1: ओके.
0: ऑल द वेरी बेस्ट. इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस.
2: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: All right, your first word is B-O-T.
1: Big Pankaj.
0: बिल्कुल सही जवाब BOAT. ये तो KG1 का सवाल था. अभी आगे और टफ होने वाले हैं. चलो दूसरा वर्ड आपके लिए है W-ER.
1: वीकर.
0: सर क्या पढ़ा रहे हो आप बच्चों को W-ER. तैरते हैं इसमें हम, पीते हैं इसको. हाँ मनीष, बिल्कुल सही जवाब. टाई हो चुका है. अब टाई ब्रेकिंग क्वेश्चन में पूछूंगी. T-W-L. मनीष बोले.
1: टॉवेल.
0: बिल्कुल सही जवाब. इसी के साथ मनीष आप हो गए हैं शॉर्ट लिस्ट फॉर द बिग समर सरप्राइजेस एंड यू वॉकिंग अवे विद कपल मूवी टिकट्स कर्सी ऑफ वॉक सिनेमाज एंड साथ में F&B वाउचर्स. मुबारक हो.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: दोनों ही नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, ये मैं समझ गई हूँ. थोड़ा उनकी टेक्स्ट बुक्स निकाल के रिवाइज करो आप दोनों. जरूरत है पंकज जी.
1: जरूरत है.
0: हाँ बहुत जरूरत है.
1: एक्चुअली बगल में मानसी पुलिस खड़ा हुआ है. अब हाथ में फोन सुना.
0: अभी देखो ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. मतलब बंदा यहाँ पे स्टेकेशन जीते या फाइन भरे. नहीं नहीं नहीं, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं. आप यू कैन ट्राई अगेन पंकज. अभी तो काफी दिन हम आपको ये मौका देंगे. बट कंग्रेचुलेशंस मनीष, आपका नाम ड्रॉ में जा रहा है. कंग्रेचुलेशंस. यू गाइस हैव अ ग्रेट इवनिंग.
1: थैंक यू. बाय
0: बाय.

0: participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, आपके पास भी मौका है, जस्ट लाइक मनीष आपने अभी भी सुना, टू विन योरसेल्फ सम फैंटास्टिक गुडीज एंड ऑफ कोर्स शॉर्टलिस्ट होने का फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग स्टेकेशन. ऑल यू नीड टू डू इज सिर्फ हमें व्हाट्सएप करना है BSS योर नेम टू 0543091062. द बिग समर सरप्राइजेस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमारी रस अल खेमा. एंड डू नॉट फॉरगेट, कल भी वंस अगेन I'll be playing the same game at the same time, wherein you will get a chance to get shortlisted in the lucky draw

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फन ग्रुप वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Mix. Weekdays 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 34 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 33 एंड फिलहाल काफी ह्यूमिडिटी भी है. ह्यूमिडिटी है 58% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह है Big Thrill and Mansi. And of course, the big breaking news right now is कि Etihad Rail ने announce किया है that the introductory operational phase of passenger rail services between Abu Dhabi and Fujairah will begin on the 30th of June, मतलब आज से 7 दिन बाद, cutting the journey time to just 1 hour 45 minutes, which is amazing. You don't have to drive you will save so much time. आप आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे. There are so many people जो commute करते हैं and I think this is going to make life so much easier. क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हम ट्रैफिक में ही बिता देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है. इनफैक्ट एक दूसरी न्यूज़ जो मैंने सुबह पढ़ी थी, मैं बहुत खुश हो गई थी अबाउट फ्लेक्सिबल रेंट पेमेंट ऑप्शंस. मतलब आपको 12 चेक्स देने का, मंथली पे करने का ऑप्शन दिया जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू टेनेंट. सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो जो 3-4 चेक का सिस्टम होता है ना, हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी भारी सा पड़ जाता है. तो ये अच्छी खबर है.

0: खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग ब्रेकफास्ट विद सिद वीकडेज फ्रॉम 6 to 10 AM ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय जुलेखा हॉस्पिटल जेट और यूए पार्ट ऑफ एलीट ग्रुप होल्डिंग एंड हेना स्पीडी इजी हेयर कलर.

0: Thank you.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
2: insurancemarket.ae.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.